आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:35 और 48 सेकेंड। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फिरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी में। और भोर सुहानी में हम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों से किस तरीके से हम आगे निकले, उससे कैसे बाहर निकले, हम उस पर बातें करते हैं। और ये भोर सुहानी में हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आज का यह दिन हमारे लिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होगा। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न दौलत है न शोहरत, बल्कि वो है मोहब्बत। एक सच्चा दिल, एक मीठी मुस्कान और अपनेपन से भरा एक लफ्ज़ किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। जिंदगी का असली सफ़र तभी खूबसूरत बनता है जब हम अपने दिल में प्यार, अपनापन और इंसानियत के लिए जगह बनाए रखते हैं। मोहब्बत सिर्फ किसी एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि हर उस भावना का नाम है जो दिलों को जोड़ती है जब हम सम्मान, अपनापन और मुस्कान बांटते हैं, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत होती चली जाती है। एक छोटी सी मुस्कान, एक सच्ची दुआ और किसी का हाथ थाम लेने का जज्बा, शायद यही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ऐसा ही प्यार से भरा एक बहुत ही प्यारा नगमा है फिल्म संगम से। आवाजें हैं लता जी और मुकेश की, दोनों की दिलकश गायकी इस गीत को आज भी हर चाहने वाले के दिल में बसी हुई है। तो आइए इसी खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस महफिल में

हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म संगम से। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो सोचते हैं, उसका असर हमारे दिल और रिश्तों पर ज़रूर पड़ता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके शब्दों में मिठास हो और आपके दिल में दूसरों के लिए सम्मान हो। कभी कभी एक अच्छा लफ्ज किसी के चेहरे पर मुस्कान ही सिर्फ नहीं ला सकता, बल्कि उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसी प्यार भरे संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं भोर सुहानी के इस सफ़र पर। कहते हैं दूसरों की कमियों को सुनने ढूंढने से बेहतर है उनकी अच्छाइयों को पहचाने। दिल में नफरत नहीं बल्कि प्यार और समझदारी के लिए जगह बनाए रखिए, क्योंकि अच्छी सोच ही एक खूबसूरत ज़िंदगी की बुनियाद होती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है, ऐसे ही संदेश के साथ। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की। इस गीत में वो ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों को अपनाकर हम अपने आसपास का माहौल भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं फिल्म आया सावन झूम के से, जो कहता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो, और सिर्फ अच्छाई की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाओ।

बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। फिल्माया सावन झूम के आई ये नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया है इस नगमे में कि अगर हम में बुराई है या किसी और में बुराई है तो हम उसकी बुराई को सिर्फ ना देखें बल्कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होगी। कहते हैं कि हर इंसान में कुछ अच्छी खूबियाँ होती है, कुछ खामियाँ भी होती है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी खूबियों को बयान करें दूसरों के सामने, बुराइयों को नहीं। क्योंकि अगर आप उसकी खूबी को बयान करते हैं किसी और के सामने तो ये होगा कि जब वो शख्स उसके बारे में बताएगा उसको तो हमेशा उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें निकल करके उसके जहन में आएंगी और वो ये कोशिश करेगा कि हम में जो खामियाँ हैं उसको दूर करें। और इसीलिए हमेशा किसी न किसी की बुराई नहीं बल्कि उसके खूबियों को बयान करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे और आज के इस सफ़र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के इस भोर सुहानी को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फिरोज़ को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. His visit is expected to provide fresh momentum to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Prime Minister Modi is also scheduled to participate in the India-Australia CEOs Forum and address business leaders.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. Yes, hope you all are doing good today, and the weather is so cool outside and that little drizzles are giving so much hope for the day. And are you feeling like your brain has 100 taps open at the same time? ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलमिंग एंड एग्जॉस्टिंग हो गई है. इफ़ यू आर बैटलिंग दैट अल्टीमेट मॉडर्न डे विलन कॉल्ड ब्रेन फॉग, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं है. बट गेस व्हाट, वी हैव दैट परफेक्ट एंटीडोट टुडे एंड वी आर डाइविंग डीप इन टू हाउ स्पिरिचुअलिटी हैज़ टेकन अ स्टनिंगली ब्यूटिफुल मॉडर्न अवतार इन रीसेंट टाइम्स. अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब बदल चुका है. वी आर talking about solo traveling to find yourself, finding peace in wellness retreats, the magic of journaling, slow living and mindful eating. It's all about healing, growing and finding your zen, right? Aur ha, plus I have got some mind-blowing interesting facts of the day that will absolutely flip your perspective, and we'll talk about why everyone on the internet is suddenly telling you to go touch grass. Ki thoda bahar aa jao, नेचर को फील करो, सो लीन बैक एंड टेक अ डीप ब्रेथ और चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं. टू गेट अस इनटू दैट परफेक्ट रिलैक्स्ड जोन, लेट्स प्ले सम इनक्रेडिबल म्यूजिक. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9. नमस्ते, हेलो, आदाब, शुरू हो चुका है, लेट्स रोल.
2: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. If you are just tuning to FM Rainbow 101.9, I'm talking about so many interesting facts on spirituality today and now. So, पता है जब हम वर्ड स्पिरिचुअलिटी सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? प्योर एस्थेटिक लाइफ, चैंटिंग और मूविंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. बट इन रीसेंट टाइम्स इट हैज़ टेकन अ स्टनिंगली मॉडर्न अवतार. अब ये सिर्फ रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं है. टुडे इट्स अबाउट मेंटल वेलबींग, हीलिंग एंड अलाइनमेंट. इट इज़ अ कॉन्शियस चॉइस टू पॉज इन अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड. Whether you are journaling your thoughts at night or taking a mindful breath before eating, आप actually spiritual practice ही कर रहे हो. Modern spirituality is all about connecting with yourself first. So, what's your version of it? Think about it और सुनते रहिए FM Rainbow 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. Let's talk about solo traveling. Okay, पहले के ज़माने में लोग तीर्थ यात्रा पर अकेले निकलते थे तो टू फाइंड पीस. आज का यूथ यू नो जस्ट पैक्स देयर बैकपैक, बुक्स अ होम स्टे इन द माउंटेन्स और बाय द बीच एंड गो सोलो. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल अलोन यू आर नॉट जस्ट एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी, आप अपने अंदर के शोर को शांत कर रहे होते हो. डीलिंग विद डिलेड फ्लाइट्स, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, सिटिंग क्वाइटली विद अ कप ऑफ कॉफी इन अ क्वाइंट कैफे, इट टीचेस यू रेजिलियंस एंड प्रेजेंस. ये अकेले सफ़र करना ही आज का नई स्पिरिचुअल जर्नी है. तो इट माइट बी देर आर मेनी वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैव टेकन प्लेस इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. सो लेट्स टॉक मोर अबाउट इट एंड मीनवाइल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.

104.9. This is RG Sri Vaishnavi. Okay. What's up? So I was talking about spirituality and various forms of it, right? So let's speak about a super simple tool that is deeply spiritual. You know what? It's journaling, guys. हम पूरे दिन में हजारों लोगों से बात करते हैं, राइट? बट खुद से कब बात करते हैं? पुटिंग अ पेन टू पेपर फॉर जस्ट 10 मिनट्स अ डे इज़ लाइक होल्डिंग अ मिरर टू योर सोल. जब आप अपने डर, अपनी खुशी या सिर्फ अपनी ग्रैटिट्यूड को पेपर पर लिखते हो तो दिमाग का सारा कचरा साफ हो जाता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रेयर वे यू डोंट आस्क फॉर थिंग्स, यू जस्ट प्रोसेस योर रियलिटी. इट ग्राउंड्स यू इंस्टेंटली. अगर आज का दिन थोड़ा भारी लग रहा है तो ट्राई राइटिंग इट डाउन टू नाइट. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. अगला गाना आपका बिल्कुल दिल के पास.

जस्ट टू एन्जॉय योर डे विदाउट लुकिंग एट योर फोन. वॉकिंग स्लोली, जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को एक्चुअली एक्सपीरियंस करना. एंड ऑल्सो एंटर टू माइंडफुल ईटिंग, अ डीपली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हाइडिंग इन अ प्लेन साइट. इट्स अबाउट लुकिंग एट योर प्लेट, स्मेलिंग द अरोमा, थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर द मील एंड च्यूइंग एवरी बाइट स्लोली. जब आप अपना फूड के टेक्सचर और टेस्ट को एक्चुअली फील करते हो, यू आर प्रैक्टिसिंग डीप माइंडफुलनेस. इट चेंजेस योर रिलेशनशिप विथ फूड एंड योर बॉडी. नेक्स्ट टाइम यू ईट, टर्न ऑफ योर स्क्रीन्स और खाने को एन्जॉय कीजिए. लेट्स गेट बैक टू सम ग्रेट म्यूजिक राइट नाउ. यू आर लिसनिंग टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: You're listening to Akashwani FM Rainbow 101.9. Till now, you have listened to news headlines in Telugu, and the time in the studio clock is 11:03, and we are back to Namaste, Hello, Adab. So, एक सिंपल सा बात सोचिए, आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में किसी बात पर बहस छिड़ गई. समवन सेड समथिंग एंड यू गॉट एंग्री. योर हार्ट रेट वेंट अप एंड यू स्पेंड 2 hours टाइपिंग एंग्री रिप्लाइज. पूरा मूड खराब हो गया. ओके, बट देन यू स्टेप्ड आउटसाइड टू बाय समथिंग लाइक मिल्क एंड फेल्ट द कोल्ड ब्रीज आउटसाइड एंड सॉ समवन्स किड लाफिंग एंड सडनली that phone fight felt so stupid. This is exactly what the younger generations

जिनजी कॉल्स गो टच ग्रास। उनका कहना बिल्कुल सही है, वेन यू गेट टू ट्रैप्ड इनसाइड योर फोन एंड एवरीथिंग फील्स लाइक अ लाइफ और डेथ प्रॉब्लम, अपना फोन साइड में रखो, बाहर जाओ, मिट्टी और घास को देखो एंड रिमेंबर दैट लाइफ, रियल लाइफ इज द आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन। व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्रेज जेंजी हैज कॉइन्ड इन रीसेंट टाइम्स, राइट? यस, थिंक अबाउट इट और सुनते रहिए FM Rainbow 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: You're tuned into Akashwani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So, चाहे आप ऑफिस में हो, शॉप पर है या घर का काम कर रहे हैं, जस्ट लुक एट योर हैंड्स राइट नाउ. व्हेन वाज द लास्ट टाइम दे टच्ड अ लीव, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल और ए ट्री बार्क इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक फोन और अ स्टीयरिंग व्हील? जेंसी रिमाइंड्स अस ऑफ समथिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज न्यू, नेचर हील्स. तो आज का रूल सिंपल है. राइट आफ्टर माई शो आई अर्ज यू टू पुट द फोन डाउन फॉर 5 मिनट्स, गो टू योर बालकनी और स्टेप आउट ऑन टू द स्ट्रीट समवेयर एंड लुक एट द स्काई एंड टच अ प्लांट. जिंदगी स्क्रीन के बाहर बहुत सुकून वाली है. अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेन फॉग एंड बर्न आउट. बट फर्स्ट लेट्स प्ले अ ट्रैक दैट विल मेक यू वॉन्ट टू डांस. स्टे ट्यून्ड.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Namaste Hello Adab on Akashwani FM Rainbow 101.9. I'm your RJ Sri Vaishnavi. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप हाथ में फ़ोन पकड़े हैं और पूरे घर में मोबाइल ढूंढ रहे हैं और यू वॉक इन टू द किचन एंड स्टैंड देयर एंड कम्प्लीटली फॉरगॉट व्हाई यू वेंट देयर इन द फर्स्ट प्लेस. दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज अ ब्रेन फॉग, यानी दिमाग में छाया हुआ ढूंढलापन. इट फील्स लाइक योर ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर विथ 50 टैब्स ओपन एंड एवरीथिंग हैज स्लो डाउन. It doesn't mean you're losing your memory, it just means your brain is so exhausted from processing too much information. You experienced it, right? जब दिमाग थक जाता है तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं. Let's figure out why this happens, but first, let's clear that fog with this beautiful song.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi and I was talking about brain fog. So, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है जब हम उसे घंटों लगातार बिना ब्रेक लिए चार्जिंग पर लगा कर उसे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फ़ोन गर्म हो जाता है, बटन्स काम करना बंद कर देती हैं और कभी कभी वो सेफ्टी के लिए अपना आप स्विच ऑफ हो जाता है. Our bodies and minds do the exactly same thing and that state is called burnout. जब आप बिना रुके दिन रात काम करते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी उठाते हैं और बिना सोए बस भागते रहते हैं तो एक दिन आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है. यू फील टोटली एम्प्टी, इरिटेटेड एंड टायर्ड इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर 8 लॉन्ग आवर्स. सो शाउट आउट टू Gen Z फॉर नॉर्मलाइजिंग दिस वर्ड burnout, बिकॉज पहले के ज़माने में लोग इसे सिर्फ आलसी होना या नखरे दिखाना कहते थे. बट इट्स अ रियल मेडिकल रियलिटी एंड इट्स योर बॉडी वे ऑफ सेइंग स्टॉप. लिसन टू योर सिस्टम बिफोर इट क्रैशेस कम्प्लीटली. टेक अ डीप ब्रेथ और सुनते रहिए FM Rainbow 101.9.

But light and say no, I'll drive for another next 20 kilometers. The vehicle will stop dead in the middle of the road, causing a huge traffic jam. Burnout has the exact same warning lights, but we constantly ignore them. अगर आपको आजकल बिना किसी वजह का गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर रोना आ रहा है, या सुबह उठकर काम पर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, दिस इज योर मेंटल डैशबोर्ड्स रेड लाइट ब्लिंकिंग. इट्स सेइंग दैट द पेट्रोल टैंक इज एम्प्टी बॉस. काम तो चल रहेगा दोस्तों, पर आपकी हेल्थ और आपकी शांति उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है. डोंट वेट फॉर योर इंजन टू सीज अप, लेट्स पुल ओवर, टेक अ टाइनी ब्रेक राइट नाउ एंड लेट दिस नेक्स्ट सॉन्ग रिचार्ज यू इमीडिएट मेंटल बैटरी.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Akashvani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So imagine this situation. रात के 12 बज रहे हैं, आप बेड पर हैं और बहुत थके हुए हैं. आपने सोचा चलो सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट्स फोन देख लेती हूँ. और रील स्क्रॉल करते करते सडनली रात के 2 बज गए. नेक्स्ट मॉर्निंग यू वेक अप फीलिंग लाइक अ हैवी ट्रक रन ओवर योर हेड एंड ब्लरी विजन, हैवी आईज एंड अ टोटली क्लाउडी ब्रेन. जेन ज़ी हैज़ अ ब्रिलियंट वर्ड फॉर दिस हैबिट, इट्स डूम स्क्रोलिंग. यानी लगातार बिना किसी

की नेगेटिव यूजलेस या एडिक्टिव वीडियोस देखते जाना, दिस इज़ द एब्सोल्यूट नंबर वन रीजन फॉर योर मॉर्निंग ब्रेन फॉग. योर ब्रेन इज लाइक अ मशीन दैट नीड्स डार्क क्वाइट स्लीप टू क्लीन आउट इट्स वेस्ट एट नाइट. अगर आप उसे सोते वक्त भी स्क्रीन की ब्लू लाइट दोगे तो सुबह दिमाग में धन तो पक्का होगी. टू नाइट लेट्स प्रॉमिस टू लॉक द फोन अवे 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग. फॉर नाउ लेट्स क्लियर द एयर विद सम ब्यूटिफुल सॉन्ग.

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24

such a beautiful song Sucker from Jonas Brothers. एंड सो पता है दोस्तों, हमें से बहुत लोगों को एक अजीब सी बीमारी होती है, विच इज़ कॉल्ड पीपल प्लीजिंग, यानी सबको हर वक्त खुश रखने का बीमारी. वी से यस टू एक्स्ट्रा ऑफिसर्स, यस टू एवरी फ्रेंड्स प्लान, एंड यस टू एवरी फैमिली ड्रामा, इवन वेन वी आर फिजिकली डाइंग इनसाइड फ्रॉम एग्जॉशन. एंड दिस डायरेक्टली ओपन्स द डोर टू बर्न आउट. हियर इज अ सिंपल ब्यूटिफुल रूल ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल. नो इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस. किसी चीज़ के लिए तमीज़ से ना बोलना कोई बुरी बात नहीं है. इट सिंपली मीन्स यू वैल्यू एंड प्रोटेक्ट योर लिमिटेड डेली एनर्जी. एंड इफ यू आर एग्जॉस्टेड टुडे, इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू स्किप दैट इवनिंग पार्टी और टेल योर कोलीग, आई विल लुक इन टू दिस टुमारो फ्रेश मॉर्निंग. जिनजी इज़ एक्चुअली अमेजिंग एट सेटिंग दिस बाउंड्रीज, और उनसे हमें ये सेल्फ लव ज़रूर सीखना चाहिए. प्रोटेक्ट योर पीस दोस्तों. कैच दिस नेक्स्ट हिट ट्रैक कमिंग योर वे.

0: FM Rainbow 101.9.
1: You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. बचपन के दिन याद कीजिए, हम जब खेल कर या स्कूल से तक कर आते हैं तो माँ या दादी कहती है, चलो थोड़ा लेट जाओ, आराम कर लो. बट टुडे इन दिस हाइपर फास्ट वर्ल्ड, इफ यू सिट आइडल ऑन अ सोफा फॉर इवन 10 मिनट्स विदाउट अ फोन, वी फील इंटेंसली गिल्टी. वी फील लाइक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, लैगिंग बिहाइंड और बीइंग टेरिबली लेजी. Let's change that toxic mindset right now. Rest is not a crime, it's a biological requirement. जैसे कहते हैं कि ज़मीन को हर दो तीन साल में थोड़ा टाइम काले छोड़ जाता है ताकि उसकी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो सके. Your brain seeds absolute moments of nothingness to heal from modern burnout. Sitting on your balcony and staring at the birds is productive. Sleeping a full 8 hours on time is highly productive. So, तो आज बिना किसी guilt के थोड़ा आराम कीजिए. Let's bring some calm to your busy afternoon with the next beautiful song.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Akashwani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So, एक सिंपल से बात सोचिए, जब हमारे मोहल्ले या कॉलोनी में कोई बड़ा बदलाव लाना होता है या कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो सभी यू नो ऑल द बिग पीपल इन द एरिया एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, एक कमरे में बैठकर घंटों तक चर्चा होती है और आखिर में एक कागज़ पर सभी साइन करते हैं. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड सेंचुरीज अगो इन साउथ अमेरिका एज वेल. In a small historic town called Shawmigale de Tucuman, I hope I got that right, brave leaders from all corners of Argentina traveled for days just to gather in a modest house with white walls and blue colors, you know. And today is July 9th, the exact day back in 1816 when those leaders proudly signed their Declaration of Independence, completely breaking free from the Spanish rule after years of struggle. जिसे हमारे देश में अगस्त 15 का एक बहुत बड़ा और पवित्र महत्वता है, वैसे ही अर्जेंटीना के लिए आज का दिन उनकी आज़ादी, उनका स्वाभिमान और उनकी पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है. टुडे दैट हिस्टोरिक हाउस इन टिकुमान इज कवर्ड इन ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड नेशनल फ्लैग्स रिमेंबरिंग द हीरोज हु चेंज्ड देयर डेस्टिनी. लेट्स ऑनर देयर हिस्टोरिक जर्नी ऑफ फ्रीडम विद अ ब्रिलियंट ट्रैक राइट हियर ऑन एफएम रेनबो.

0: FM Rainbow 101.9.
1: And in a blink, we are back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So, तस्वीर सोचिए, आप किसी बदले बड़े मेला या ट्रेडिशनल फेस्टिवल में गए हैं। वहाँ क्या माहौल होता है? हर तरफ लाइटिंग होती है, रास्ते पर लोग उठकर खूबसूरत कपड़ों में नाच रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और घरों से बहुत लाजवाब गाने की खुशबू आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्ट्रीट्स ऑफ ब्यूनस आयर्स एंड द रेस्ट ऑफ अर्जेंटीना लुक राइट नाउ ऑन जुलाई 9th. On their independence day, the entire country turns into a massive, colorful street carnival. वहाँ के लोग रास्ते पर उतार कर अपना world famous beautiful tango dance करते हैं, गिटार बजाते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर उनका सबसे traditional dish लॉक्रो खाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन में बनी एक बहुत स्वादिष्ट pumpkin और meat की gravy होते हैं। From the freezing snow-covered mountains of Patagonia to the warm, busy streets and every single house is flying the light blue and white flag with the golden sun in the middle. The air is just filled with pure pride, music and unity. चलिए हैदराबाद से हम भी उनकी इस खुशी में शामिल होते and tune into some fantastic music on 101.9.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Akashwani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. एंड आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे देश में जब लोग अलग अलग शहरों में जाकर बसते हैं तो वो अपने साथ अपने घर का स्वाद और खाना भी ले जाते हैं। जैसे हैदराबाद में लोग अपनी जगह की स्पेशल बिरयानी या मिठाई बनाने लगते हैं। एग्जैक्टली दैट इज़ हाउ द शुगर कुकी वॉज बॉर्न। बैक इन 1700 सम जर्मन सेटलर्स मूव्ड अक्रॉस द ओशियन एंड मेड ए होम इन अ प्लेस कॉल्ड Pennsylvania, and they wanted to create something simple, sweet, and long-lasting. So they baked what they called the Nazareth cookie. ये इतना simple biscuit था जो सिर्फ butter, चीनी और अंडे से बनता था, पर इसका स्वाद इतना लाजवाब था कि पूरे देश में famous हो गया. Over time, people started calling it the simple sugar cookie. It just shows how a simple recipe from a small home kitchen can travel across the countries and become a global favorite. Let's keep the sweet vibes going on with the next beautiful song.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Akashwani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So the time in the studio clock is 12:53. So we are almost at the end of the show. Namaste, hello, adab. Yes, so I was speaking about this National Sugar Cookie Day, right? हमारे घरों में जब बच्चे किचन में आते हैं तो उन्हें डो के साथ खेलना, उसे अलग अलग शेप्स देना और ऊपर से चीनी या स्प्रिंकल्स चिड़कना सबसे ज़्यादा पसंद होता है ना, उनके लिए वो एक खेल जैसा होता है. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी फन फैक्ट अबाउट शुगर कुकीज़. डिड यू नो दैट लीगली अ ट्रू शुगर कुकी इज़ नेवर सपोज टू हैव अ क्रीम और फ्रॉस्टिंग ऑन द टॉप. The authentic traditional way is to just sprinkle raw sugar crystals on the dough before putting it into the oven. और एक और बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ. दुनिया का सबसे बड़ा शुगर कुकी पता है कितना बड़ा था? It was wider than a room. A bakery once made a single sugar cookie that weighed over 18,000 kilos and was 80 feet wide. यानी पूरे मोहल्ले के लिए एक ही काफ़ी है. इट्स अमेजिंग हाउ मच जॉय अ लिटिल फ्लोर एंड शुगर कैन ब्रिंग टू द वर्ल्ड. आप भी अपनी आफ्टरनून को थोड़ा स्वीट बनाइए एंड ट्यून इन टू दिस नेक्स्ट अमेजिंग ट्रैक ऑन 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: So, you have listened to The Last Kiss by Pearl Jam, and today I wanted to talk about The Last Kiss Day by Taylor Swift. So, why is it special and all? I'll tell you now. So, you're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. एक पुरे पुरानी याद सोचिए, आपका कोई बहुत ही खास दोस्त या कोई अपना डोर चला गया हो और उनकी छोड़ी हुई एक छोटी सी डायरी या पुरानी फ़ोटो देखकर आपको उस दिन की पूरी कहानी याद आ जाती है, राइट? वो एक तारीख दिल में हमेशा के लिए छप जाती है, है ना? फॉर मिलियंस ऑफ म्यूजिक फैंस टुडे दैट स्पेसिफिक डेट इज़ July 9th. टुडे इज़ ग्लोबली सेलिब्रेटेड बाई म्यूजिक लवर्स एज लास्ट किस डे, नेम्ड आफ्टर द डीपली इमोशनल ट्रैक रिटन बाई द म्यूजिक आइकॉन टेलर स्विफ्ट. इस गाने में एक बड़ा ही खूबसूरत लिरिक्स है जहाँ वो गाती है, आई डू रिमेंबर नाउ द स्मेल ऑफ द रेन फ्रेश ऑन द पेवमेंट आई रन ऑफ द प्लेन. यस, सो ब्यूटिफुल, राइट? It's a song about looking back at lost love with nostalgia and peace instead of anger. Fans worldwide celebrate today by wearing purple, listening to the track on repeat and remembering their own bittersweet memories. जिंदगी में हर सफ़र हमेशा के लिए नहीं होता है, पर कुछ यादें हमेशा के लिए रुक जाती हैं. Let's lean in.

झूमे गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

కొట్టినాడు, రాయి పెట్టి కొట్టినాడు.

Rainbow 101.9.

FM Rainbow 101.9. FM Rainbow 101.9.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे।
0: ओके,
1: जिन जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में।
0: ओके,
1: और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है उसको उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बनता, फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पे बहुत ज्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जाकर के फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में

0: के बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी जी तो वो सफर जिस तरीके से रहा आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए। तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
2: बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज सिखाई जाती थी
1: जी,
2: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
1: जी,
2: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है। और इस चीज को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर
1: जी।
2: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएं हैं
1: जी,
2: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और एक मेरा
1: मातृभूमि।
2: मातृभूमि
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
2: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी,
2: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सर्वोपरि है, आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो एसएसबी जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने जीआईएस कोर्स किया एसएसबी की अकेडमी भोपाल से। तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
2: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
2: एक्सप्लोजिव आईडी जैसी घटनाएं आमतौर पर कई ज्यादा देखने को मिलती थी। तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीजों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
1: जी, तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने जीआईएस कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
2: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहां पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है। तो वहां पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहां कहां हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नजर रख सकते हैं, वो कहां कहां हमारी तैनाती है इस पर नजर रख सकते हैं। इसके लिए जीआईएस कोर्स महत्वपूर्ण है।
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी एसएसबी के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहां पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है। उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें। तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
1: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सबके साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: जी, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सके, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सके और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सके।
1: तो सर ये तो

0: ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
1: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो
0: जी
1: समय धीरे धीरे पार हो जाता है। और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहां से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहां से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूं मैं।
0: सर, आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस थे, और खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली,
0: जी
1: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था। और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है,
0: जी
1: तो सन ऑफ सॉयल होने का फायदा मुझे मुझे वहां पे मिला। मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं,
0: जी
1: नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था, क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। बींग अ लोकल, मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
0: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसके ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहां पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिब जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम में उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहां पे कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजय तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहां पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी,
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वो बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूं, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहां पे टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीजें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाहिद जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है इसी के लिए।

0: वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
1: जी
0: तो फौजी फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
1: जी,
0: उसे बखूबी निभाए।
1: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
0: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है,
1: ठीक है।
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
1: जी
0: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में, और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी
0: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
0: जी बिल्कुल
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहां पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज्यादा एक यादगार मैं कहूं और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री सोमी जोशी सर जो इंस्पेक्टर जनरल थे
1: जी,
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
1: जी,
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
1: जी,
0: राणा और प्रदीप का, जिन सबके टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं
1: जी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज में
1: जी। तो हम यहां पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
0: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
1: जी
0: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं, ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
1: जी,
0: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
1: जी।
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहां जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे, ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी,
0: और टेक्निकल चीजों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहां की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी, तो इस चीज पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया।

0: इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया या आतंकवादी को मार दिया। असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है।
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था वहां पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहां का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आप
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहां पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई
1: जी,
0: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के एसपी थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने दो टीमें बनाई और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहां पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों? और जंगल में एक सिद्धांत चलता है, यू मिस एंड आई हिट। और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था,
1: हमें
0: से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
1: जी,
0: कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज वहां पे हमें मिली और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नजदीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहां मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल अविस्मरणीय क्षण।

0: बिल्कुल
1: जहां पे, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
0: जी
1: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व,
0: जी
1: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
0: जी
1: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
0: बिल्कुल,
1: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता
0: जी
1: था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था और
0: क्या बात
1: बैठ
0: है?
1: के खाना खाता था।
0: क्या बात है सर,
1: तो ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
0: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूं, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता हूं, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूं कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
1: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
0: जी।
1: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
0: जी,
1: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
0: जी,
1: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं, कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं। और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
0: उसके कहने क्या है,
1: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा
0: सकता। क्या बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहला मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजी एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल AIR न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
1: जी, धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
0: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
1: कजरा लिखा है,
0: कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
1: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: मेरे टीम के साथी हैं,
0: साथी हैं,
1: कार्य किया है हमारे साथ।
0: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, aapka message humne pahuncha diya hai, Shivam sir sun rahe hain.
1: Ji, dhanyawad, Mrs. and Mr. Lodh ji. Main आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। इसके अलावा मैसेज है ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है कंकड़खेड़ा मेरठ से
1: जी। बिल्कुल धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे खुशी है कि एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको
1: जी। बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस

0: और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद, जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं, उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर, जय हिंद सर। प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
1: जी रोहित जी, धन्यवाद। मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही हमारा उद्देश्य था।
0: बिल्कुल, करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूं, आपकी बातें और आपकी, आपके जज्बे को सलाम करती हूं। उम्मीद करती हूं हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर आपको।
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार।
1: धन्यवाद विश्वजीत जी, हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
0: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा।
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का,
0: जी जी जी, उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार। कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या बात है सर। तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से। आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स बिकॉज ऑफ हिज टीम एंड देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स। अ लॉट ऑफ पीपल टुडे लिव टेरर फ्री, प्राउड ऑफ हिम। आयुष दाडीच हैं ये नई दिल्ली से।
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जूनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है
0: जी,
1: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के साथ।
0: बिल्कुल, और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: और ये है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ शालिनी पाठक लिख रही है आपके लिए।
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
0: और ये है मैं सोता हूं रातों को चैन से, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
0: और यह सर, शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही भी?
1: जी पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर के।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं। ये
1: धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा मैं FM रेडियो को, FM रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूं
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार।

0: वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए। उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियां हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक
0: जी,
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे
0: जी,
1: उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो
0: जी,
1: लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में, तभी जाकर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
0: जी,
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में
0: जी,
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूं
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल सीएम के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहां का वासी हूं, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा
0: जी। और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहां मैं बतौर ट्रेनर हूं। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया
0: जी। तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशन हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीजें की जाती हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीजों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था
0: जी।
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है,
0: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
1: जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं बड़े परिवार से आता हूं, जिसमें कि हम लोग 4 भाई बहन हैं, और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
0: जी
1: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स
0: जी
1: में आना

102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स. आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल. सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है. मैं आपको जैसे अभी बता रहा था तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक

0: जाता था, हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज से, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है
1: जी
0: मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये है हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से। और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं, ये हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, यू आर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर और योर एप्रिशिएट वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथी होंगे
0: बिल्कुल मेरे
1: बाबुल
0: साथी हैं और
1: जी
0: मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद,
0: जय हिंद, जय भारत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign. FM Rainbow 101.9.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: ప్రొటెక్ట్ చేయమా.
1: FM Rainbow 101.9.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर समय इस वक्त स्टूडियो घड़ी में रात के 9:30 और 10 सेकेंड्स हो रहे हैं और अब पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामईन तस्लीमात, उर्दू प्रोग्राम नारंग की बज़्म में आप सभी का दिली खैर मकदम है। बता दूं कि आज की बज़्म को हमने सजाया है हर्फ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है आयशा बतूल की। मुशायरा आप समाप्त करेंगे, शुरकाए होंगे मुशायरा के आगा सरोज, समीउल्ला समी और जामिन अली हसरत। गीतों की महफिल सजेगी बाउनवान गीत सुरी ले गाते जामे, और बज़्म के आखिर में आप समात करेंगे पयाम शब। पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जैदी की। सामिन और स्टोरी घड़ी में रात के 9:30 तो बज चुके हैं और बज़्म का आगाज़ हो चुका है, तो हम जल्द से जल्द प्ले करते हैं हर्फ ताबिंदा को, जिसे पेश कर रही हैं आयशा बतूल। आइए सुने।
1: हम जितना मर्जी सोच ले कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त कभी नहीं रुकता। वो मूड, थकन, खौफ या फिर हमारे मंसूबे का इंतजार नहीं करता। हर दिन जो गुजर रहा है वो जिंदगी को कम कर रहा है। सवाल ये नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, सवाल यह है कि हम आज क्या कर रहे हैं। ख्वाब सभी देखते हैं, मगर ख्वाब और हकीकत के दरमियान सिर्फ एक पुल होता है जिसे अमल का नाम दिया गया है। अगर अमल नहीं तो ख्वाब सिर्फ जहनी तफरी बनकर रह जाते हैं। सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लोग कहते हैं सही वक्त आने दो, ये जुमला खुद को बेवकूफ बनाने का सबसे मुहज़िब तरीका है। याद रहे, सही वक्त कभी खुद नहीं आता, बल्कि वक्त को सही बनाना पड़ता है, उसका सही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम अभी भी तैयार नहीं होंगे तो ये हकीकत है कि हम कभी तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तैयारी अमल से आती है, सोचते रहने से नहीं। हम नाकामी से जितना खौफ खाएंगे उतना ही नाकामी करीब आती जाएगी। और ये वाज़ह है कि डर को दलील बनाकर बैठ जाना कमजोरी है, हिकमत नहीं। हम में से अक्सर लोग मसरूफ रहते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, थक भी जाते हैं, लेकिन नतीजा सिफर आता है। क्यों? क्योंकि हम आसान कामों में वक्त लगा देते हैं और मुश्किल कामों को टालते रहते हैं। असल तरक्की वहां होती है जहां मुश्किल काम किया जाए, और वही मुश्किलात हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। बाकी सब खुद को मसरूफ रखने का एक जरिया ही है, और ऐसा करके हम खुद को धोखा देते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपना मवाजाना दूसरों से करते हैं और ये कहते हैं कि फला कहाँ पहुंच गया, हम अभी तक यही हैं। या तो फिर जलन या हसद महसूस करते हैं, मायूस हो जाते हैं। ये सभी फजूल रद्द अमल है। हर शख्स की रफ्तार अलग है, और ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि जो शख्स मुस्तकिल चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो सुस्त रफ्तार होने के बावजूद भी उस शख्स से आगे निकल जाएगा जो सिर्फ बातों में और इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी सुस्ती और बेनज़मी होती है, कोई और नहीं। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है, ताकत भी, मौके भी, रिश्ते भी, और अगर हमने अपनी सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल ना किया तो वो सलाहियतें जंगालूद हो जाती हैं। टैलेंट सलाहियत एक बीज की तरह है, और अगर उसे जमीन में बोया ना जाए तो फिर कभी दरख्त नहीं बनेगा। सिर्फ तारीफ सुनकर खुश हो जाना बेमाने है, और असल कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपनी सलाहियत को पहचाने और अपनी सलाहियतों का

0: भरपूर मुजाहरा करते हुए कामयाबी के जीने तय करें। और ये भी सोचना ज़रूरी है कि आज का जो दिन गुजर गया उसे संजीदगी से लिया जाए, कल के लिए कोई कामों को छोड़ा ना जाए। हर दिन एक नया मौका है और हर दिन जिस तरह से खामोशी से गुजरता है, मौका भी उसी तरह से गुजर जाता है। 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो या तो आप कामयाब हो चुके होंगे या फिर वक्त जाया करने या अमल ना करने की वजह से आप नाकाम हो गए होंगे। फैसला मुश्किल जरूर है लेकिन ईमानदारी से फैसला करने की जरूरत है। एक खूबसूरत सा शेर है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है।
1: सामिन इकराम, अभी आपने समाअत किया हरफ़ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश थी आयशा बदूल की, और बाउनवान वक्त पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी कि कैसे वक्त पर लगा कर उड़ जाता है और हम थाम नहीं सकते उसको, ना ही पकड़ सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। वक्त तो बस काम ही है उसका, गुजरना गुजरना और गुजरते ही चले जाना है, इस गुजरते हुए लम्हों में, घड़ियों में, पलों में, दिन, महीने, साल में क्या खोया क्या पाया, बस यही रह जाता है। और वक्त बहुत सिखा जाता है क्योंकि गुजरना ही उसका काम है, तो हमें भी बड़ी एहतियात से चलना है ज़िंदगी में, वक्त को पकड़ते हुए और संभलते हुए, खुद अपने आप को संभालते हुए चलना है। तो हरफ़ ताबिंदा ये था, आपने समाअत किया, और अब बज़्म सजाती हैं मुशायरे की, शुरकाए मुशायरा हैं आगा सरोश, समीउल्लाह समी और जामिन अली हसरत। आइए सुनें।
2: सामईन मोहतरम, ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा इस खुसूसी मुशायरे में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज के इस खुसूसी मुशायरे में शहर हैदराबाद के मुमताज़ व मारूफ शुरा शिरकत फरमा रहे हैं। आइए मैं इस मुशायरे का आगाज करने के लिए शहर के मारूफ शायर समीउल्लाह समी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें।
3: मौजूद सामईन, आपकी खिदमत में गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज किया है कि उल्फत को हमने रख लिया नफरत निकाल के, उल्फत को हमने रख लिया नफरत निकाल के, नफरत के सांप रखे नहीं दिल में पाल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, मंजर बदल गए हैं पुराने ख्याल के, किरदार मस्क हो गए शीशे में हाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, देखे हैं दौर हमने उरूजो जवाल के, रखते हैं इसलिए ही कदम हम संभाल के। मतलब है कि कासे में अपने हमने किनात को डाल के, कासे में अपने हमने किनात को डाल के, इज्जत को अपनी रखा है हमने संभाल के। आखिरी मतलब है गजल का कि लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, लाया हूँ मोती हुस्न का दरिया खंगाल के, तरकीम करने तेरे कसीदे जमाल के। शेर है कि गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, गिरता नहीं कभी मैं बुलंदी से इसलिए, रखता हूँ साथ अपने मैं जीने जवाल के। शेर है कि दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल के, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, दौलत का पेड़ सूखते ही सारे उड़ गए, अहबाब सारे गोया के पंछी थे डाल के। शेर है के नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
4: फिर सुनाइए। वाह वाह वाह।
3: नादा कहा किसी ने तो पागल कहा कोई, तोहफे मिले हैं हमको ये सिदके मकाल के।
4: क्या बात है।
3: शेर है कि आखिरी शेर है मकते से पहले कि कैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के, खैरात हम छुपा के ही देते हैं दोस्तों, खैरात हमने दी नहीं सिक्का उछाल के। मकता कुछ यूं है कि कैसे मिलेगा दिल का सुकून अब हमें समी, کیسے ملے گا دل کا سکون اب ہمیں زمین، ملتے نہیں جو آج نوالے حلال کے، ملتے نہیں جو

0: बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा, बहुत
0: गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे। शेर मुलाजा करेंगे, तस्वीर तू बनाता है मेरे लहू से जब, तस्वीर तू बनाता है मेरे लहू से जब, जलता हुआ मकान भी मंजर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा है,
0: जलता हुआ मकान भी मंजर में डाल दे। शेर मुलाजा करें रो भाई के, या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला, या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला, या मेरे आंसुओं को समंदर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब।
0: या तो चमन में फूल की सूरत इन्हें खिला, या मेरे आंसुओं को समंदर में डाल दे। शेर मुलाजा करें कि फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल दे। फूलों की पत्तियों को मिली है नमी मगर, शबनम का सारा दर्द गुले तर में डाल दे। नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र। शकील भाई
1: जी,
0: मुलाजा करें कि नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र, यादों के फूल ला मेरे बिस्तर में डाल दे।
1: अच्छा,
0: नींदे मेरी महकती रहेंगी तमाम उम्र, यादों के फूल ला मेरे बिस्तर में डाल दे।
1: बहुत अच्छा।
0: सरोज साहब मख्ता मुलाजा करें कि हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल दे। हीरे जवाहरात की हसरत नहीं मुझे, मोती सुकून दिल के मेरे घर में डाल दे। गुलहाए बंदगी दिले कमतर में डाल दे, मालिक जुनून इश्क मेरे सर में डाल दे। एक गजल का मतलब मुलाजा करें कि हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है, हमारा हौसला टूटे, हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है। शेर मुलाजा करें कि यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है। यहाँ एहसास अपना कैद में रखो तो बेहतर है, जमाने भर की तहरीरों से चेहरा टूट जाता है। मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में,
2: क्या बात है।
0: मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में, तमाचा हाल का लगता है शीशा टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: फिर बढ़िया सर। वाह वाह।
0: मैं खुद को देखता हूँ जब कभी माजी के शीशे में, तमाचा हाल का लगता है शीशा टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, वाह वाह।
0: वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में,
1: क्या बात।
0: ये देखिए कि वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में, जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत।
0: वफा का पास रखता है भला कोई जमाने में, जरा सी देर में बरसों का रिश्ता टूट जाता है। शेर मुलाजा करेंगे, तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, हवा जब तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है। तो तड़प मंजिल की है तो हौसला चट्टान कर लेना, हवा जब तेज चलती है तो सहरा टूट जाता है। तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से,
1: वाह वाह वाह।
0: तमन्ना मुझको मंजिल की लिए फिरती है बरसों से, मगर मंजिल के पास आते ही रास्ता टूट जाता है। मगर मंजिल के पास आते ही रास्ता टूट जाता है। मख्ता मुलाजा करें रो भाई के, हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है,
1: वाह।
0: हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है, अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट जाता है। हकीकत है ये हसरत और मेरा तजुर्बा भी है, अगर सच्चे की सोहबत हो तो झूठा टूट जाता है। हवा के जोर से मजबूत रस्सा टूट जाता है,
1: क्या बात
0: है। हमारा हौसला टूटे तो क्या क्या टूट जाता है। डॉक्टर जामीन अली हसरत अपना कलाम पेश कर रहे थे।

ज़ामिन अली हज़रत, समीउल्ला समी और आगा सरोश, ये थे मुशायरे के शुरका। अभी आपने समाप्त किया सामिने ग्राम मुशायरा। यकीनन आपने लुत्फ़ उठाया होगा, महजूज़ हुए होंगे वो जो अशार थे आगा सरोश के या समीउल्ला समी के या ज़ामिन अली हज़रत के। बहुत ही खूब अशार, लुत्फ़ आ गया। सामिन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और इस वक्त स्टूडियो घड़ी में रात के 9:50 और 35 सेकेंड्स हो रहे हैं। अब वक्त है गीत सुरीले गाते जा समाप्त करने का। आज उन्वान हमने लिया है तुम सा नहीं देखा तुमने।

तुमसा नहीं देखा, तुमने ऐसा किया, तुमसे मोहब्बत है, तुमसे प्यार है, फलां फलां। तो ये जो तुम होता है, मुखातिब करने किया जाता है सामने वाले को, आप, तुम, आप कहेंगे, फर्स्ट फर्स्ट टेंस कहा जा सकता है, जैसे कि होता है गुड, बेटर, बेस्ट। फिर सेकंड पे आते हैं हम तू, और थर्ड तो तू हो गया। ये तो खैर कोई बोलना भी नहीं चाहेगा और ना ही मुखातिब करना चाहेगा, सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कहते हैं आप, तुम। तो हम तुम वाले सॉन्ग सुनेंगे, फिल्मी नगमे ही सुनेंगे हम। अब इस गीत में ये कहा जा रहा है कि अगर प्यार है या तुम मुझसे प्यार करते हो तो इकरार भी होना चाहिए, तो यही पूछा जा रहा है इस गीत में। आइए सुनें।

सामान्य ये तो तकरार थी कि तुम प्यार कितना करते हो। फिलहाल ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामान आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और स्टूडियो की घड़ी तो बस चल रही है, चलना ही वक्त है, घड़ी का काम है। और अब ये जो दूसरा नगमा मैं प्ले करने जा रही हूँ उसमें भी सीधी सी बात है, तुमसे ही तकरार है। हाँ, लेकिन इतना फ़र्क है कि उसमें पूछा जा रहा था कि दोनों में बहस हो रही थी कि तुम कितना प्यार करते हो, तुम कितना, और जो पैमाना होता है वो बताया जा रहा था, लेकिन इस गीत में जिक्र है कि दिल तुमने चुरा लिया है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM MHz पर। सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जा। और हमने उनवान लिया है, टॉपिक लिया है मौजू तुम, जो मुखातिब किया जाता है। बातचीत का ये एक हिस्सा है जो सामने वाले को हम मुखातिब करते हैं। तो इसके तहत हम फिल्मी नगमे प्ले कर रहे हैं। बात हो रही थी कि भाई तुमसे मिलने के लिए दिल करता है। अब ऐसा भी होता है कि सामने वाले को जब सामने की चीज़ या सामने वाला हमें पसंद आ जाता है तो यकीनन हम उससे मिलना ज़रूर चाहेंगे। और साथ ये भी होता है कि एक खदशा, एक डर जो लगा रहता है कि ये जो तुम अब चले जा रहे हो फिर कब मिलोगे, तो फिर ये आस भी जुबान पे चली आती है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM MHz पर सामयिन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जा, और हमने उन्वान चुना है तुम। और अब बहुत ही खूबसूरत सा और एक नगमा प्ले करने जा रही हूँ कि बस तुमको देखा तो दिल हुआ फिदा।

सामाईन, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा, और उनवान है तुम, और एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जब किसी से मिला जाता है और मुखातिब भी इस तरह हो तो फिर कितना खूबसूरत लगेगा।

सामाइन, ये तो थी मिलने की तमन्ना, ख्वाहिश, उमंग, तरंग। और फिर एक में ये जिक्र है कि अगर तुम मिल जाओ तो फिर जमाना बन जाए, जिंदगी बन जाए, सुधर जाए, संवर जाए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामाई आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और बज़्म सजी हैं गीत सुरीले गाते जा, और हमने उन्वान लिया है तुम। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त वक्त हुआ है रात के 10:38 और 32 सेकेंड्स, और तुम, हाँ वही तुम की तकरार, और ये तुम में इकरार है, इनकार है, चाहत है, उमंग है, आस है, और तुम मिल जाने के बाद वो जो जिंदगी का समर जाना है, जिंदगी में खुशियों का आ जाना है, महक बनकर, खुशबू बनकर महक जाना है जिंदगी में, यही बातें हैं तुमसे मुखातिब होकर। अब यहाँ बस मर मिटने की बातें हो रही हैं।

समय तुम जिससे मोहब्बत करते हैं, इश्क जिससे हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, वो देख लेना एक लम्हा, एक पल, तो बस उसका एक नज़र, एक झलक दिख जाना, या उसकी आंखों में वो जो झलक होता है वो उसका नज़र आ जाना, तो फिर समय ही बदल जाता है। उसकी एक निगाह क्या कमाल ढा जाती है।

सामाइन, आप से अगर हम मुखातिब हों, सामने वाले को वो जो अपना होता है, अजीज़ होता है, तो शायद हाँ यकीनन रिस्पेक्ट है, उसमें इज्जत है, एहतराम है, लेकिन वो जो अपनाइयत नज़र आती है, अपनापन महसूस होता है, वो लफ्ज़ है शायद तुम। और वो तुम, वो जो हम जिसे चाहते हैं, सामने वाला जो है तुम, उसका प्यार से देखना बड़ा ही अहम हो जाता है, और लम्हात बदल जाते हैं ज़िंदगी के पल पल, और वो वही होता है जिसको, यानी तुम, ज़िंदगी हो, पूजा हो, इबादत हो, सभी कुछ मान लेता है।

0: सामाइन, अब नैरंग के अख्ताम पर समाप्त करते हैं पयाम शब, जिसे पेश कर रहे हैं नदीम अख्तर जैदी।
1: और क्या था बेचने के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। ये शेर जिंदगी की तल्ख हकीकतों, कुर्बानियों और मजबूरियों की अक्कासी करता है। जब पास बेचने के लिए कुछ ना हो तो अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिश और अपनी आरजुएं ही कुर्बान कर दें। ये उन लोगों की दास्तान है जो हालात के हाथों अपने दिल के अरमानों को तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज का पैगाम ये है कि जिंदगी में बाज़ाओकात इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने ख्वाबों की कदर करना भी ज़रूरी है। वक्ती फ़ायदे या दबाव के तहत अपने तमाम मकासिद और उम्मीदों को कुर्बान कर देना दानिशमंदी नहीं। ख्वाब ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अपने ख्वाबों और मकासिद की हिफाजत करो, क्योंकि यही तुम्हारी ज़िंदगी का सरमाया है। हालात से समझौता ज़रूर करो, मगर अपने हौसले और उम्मीदों को मुकम्मल तौर पर फरोख्त तो न करो। ज़रूरत इंसान से बहुत सी कुर्बानियाँ मांगती हैं, लेकिन कामयाब वही है जो मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों की रोशनी को बुझने न दे। अगर कुछ ख्वाब कुर्बान भी करने पड़ जाएं, तो नए ख्वाब देखने का हौसला जिंदा रखो।
0: सामाइन, अभी आपने सुना पयाम शब, जिसे पेश कर रहे थे नदीम अख्तर जैदी। सामाइन, आज की बज़्म इख्तिताम से कबल मैं आपको बता दूं कि कल 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज़्म में जुमा की जो बज़्म होगी उसमें आप समात करेंगे खरात कलाम पाक हरफ ताबिंदा आयशा बतूल से। डॉक्टर माइक पर इस सिलसिले के तहत आप समात करेंगे सरमा में सेहत कैसे बहाल रखें, इरफाना तस्नीम से लिया गया इंटरव्यू डॉक्टर साहिबा से, और गीत सुरीले गाते जा के अलावा पयाम शब आप यकीनन सुन सकेंगे। तो सामिन, इसके साथ ही हमारी ये उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज़्म अपने इख्तिताम पर पहुंचती है, इस वादे के साथ कि कल ठीक 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम की बज़्म सजाए हम हाजिर हो जाएंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, शब खैर।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद ही 101.9 FM MHz पर। सामिन, स्टोरी गिरी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में दिल्ली केंद्र से हिंदी वो अंग्रेजी में समाचार बारी बारी रिले किए जाएंगे। चलते हैं दिल्ली केंद्र और सुनते हैं समाचार।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।

0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net-zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर।

0: आज तेजी देखने को मिली। बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे ऊपर रही दवा कंपनी सन फार्मा, जिसके शेयर 2.7% लाभ के साथ बंद हुए। भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व दोनों को 2.1% से अधिक का मुनाफा हुआ। इंडिगो के भाव 2% से अधिक उछल गए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही इन्फोसिस, जिसके शेयर 1.8% नीचे आकर बंद हुए। मारुति और एनटीपीसी के शेयरों में 1.5% की गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक को 1% का घाटा हुआ।
1: इन द सेक्टोरल इंडिसीज ऑन द बीएसई 22 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स रियलिटी जंप्ड 3.7%, पीएसयू बैंक्स रोज ओवर 1.7% एंड टेलीकम्युनिकेशन एडेड नियरली 1.7%। In contrast, utilities dropped 0.3%, IT fell 0.25%, and auto dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,825 companies advanced, shares of 1,424 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे मजबूत हुआ, 95.38 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 101 पर चल रहा था। यहां पर समझना चाहेंगे सबसे पहले हम ये कि कल बाजार में दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार के आसार दिख रहे थे और लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा चले, आज हमारे बाजार ने मजबूती दिखाई, क्या मुख्य कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, आपने जैसे बताया कि बहुत ही ऐसे हाहाकार जैसे हालात बने हुए थे, तो एकदम से मार्केट्स ने रिबाउंड किया

0: और जैसे हमें लग रहा था कि शायद मार्केट आज के दिन भी गिरेंगी, कल का हालात तो ये बता रहे थे, लेकिन उसमें पहले तो ट्रंप साहब ने जैसे बोला कि भाई अभी
1: जी
0: कोई
1: जी
0: समझौता हो ही नहीं सकता,
1: जी
0: आई विल नॉट लिसन ईरान, अभी मैं बात ही नहीं करूंगा।
1: जी
0: लेकिन उन्होंने फिर बाद में एक देर रात एक स्टेटमेंट दिया कि उनको कुछ फोन कॉल्स आ रहे हैं कि समझौते की बात वो करना चाहते हैं, तो जिससे कि मार्केट्स ने रुख अपना बदला कि शायद अभी भी स्कोप है, समझौता हो सकता है और किसी शांति प्रस्ताव की आगे संभावना हो सकती है, तो मार्केट्स ने अपना रुख लिया। ये टोटली वॉलेटिलिटी है जो एक्चुअल में, तो जो भी कुछ हो रहा है हो रहा है, लेकिन जो न्यूज़ बेस्ड, जो जो हम बातचीत के जरिए से जो एक वॉलेटाइल होती है मार्केट्स, उसमें जो ट्रंप साहब के स्टेटमेंट ही इसमें मेन ड्राइवर बनते हैं सभी इन उथल पुथल में।
1: जी
0: तो जहां तक मैं समझता हूं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अभी जारी रहेगी, मार्केट्स में, मार्केट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई आज मार्केट ऊपर गया और कल फिर जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट और आ सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को बहुत सोच समझ के, जिसको हम कहते हैं कि फूक फूक के कदम रखने वाली बात होती है, उस हिसाब से चलना होगा।
1: डॉक्टर शर्मा, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग. लाइक वी सॉ ऑफ कोर्स एज वी आर डिस्कसिंग दैट डिस्पाइट द प्लंज दैट वी सॉ येस्टरडे, द मार्केट्स रिकवर्ड एंड वेरी स्मार्टली टुडे.
0: यस
1: डू यू थिंक वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स इन द मार्केट्स एवरी डे दैट वी सी इज द आर द प्राइसेज ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेज.
0: राइट
1: नाउ वी हैव सीन सिंस येस्टरडे द स्टेटमेंट वेन इट केम, वेन यू टोल्ड, लाइक यू सेड, द यूएस प्रेजिडेंट मेड सर्टन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सीज फायर विद ईरान एंड विच सॉ द ऑयल प्राइसेज गोइंग अप. बट स्टिल एट द सेम टाइम the oil prices are still within that 80 to 85 or you know 75 79 to 85 dollars per barrel range. So do you think that is also because it's still at a comfortable, I would say, range,
0: Right.
1: which is what is, you know, also like giving some scope or some kind of a comfort to the markets,
0: Right.
1: that the oil prices are still, you know, in a manageable
0: Yes,
1: range?
0: exactly. Because earlier prices were more than 100 per barrel, and many of the times more than 95. Now the prices are at 80 to 80. So these are significantly low as compared with the peak of the prices due to the this tussle. So that's why markets are not taking the prices in a negative sense. The markets are still very, very positive that if Trump processes peace, then there is a great scope to move forward and to rebound significantly to the next level. So
1: Right.
0: that is the market breadth, that markets are only waiting the good words from the mouth of Mr. Trump.
1: Another factor which I don't know, you'll have to tell us whether that has also worked in favor of the markets, you know, ending in green today. Yesterday, the IMF report came out, International Monetary Fund report, World Economic Outlook update came out, according to which India's growth for this present calendar year has been projected at 7%. If you look at the overall picture, you know, the world global the growth of figures for the world has come to 3%, whereas for India it is saying for this particular calendar year, that is 26, it has been projected at 7%. Do you think that's also a very big confidence booster?
0: Yes, that is a very big confidence booster, because we are the fastest growing economy in the world
1: Yes.
0: economic system, and we are significantly higher than the world average of 3%, and much, much higher than the advanced economies, even faster than China.
1: Yes.
0: China is at around somewhere between 4 to 4.5%.
1: Yes.
0: But India's growth, if you go by the numbers from 21, 22 to 25, 26, we are more than 7% on an average. And last year, in the last fiscal, in 25, 26, we grew at 7.7%.
1: Yes.
0: And for the current year, there are projections that India will grow at 6.6, or some projections are at around 7% also. And if the peace process deepens, if the peace is there, then India has every potential to grow at around 7% for the current year also. But India is always above the IMF projections.
1: Right.
0: I observed this since last many years, that India is above every projection of IMF so far during the last 6, 7 years. In the calendar year and in the financial year.
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आप ही के आंकड़ों को समझना चाहेंगे. मैक्रो के जो हमारे फिगर्स हैं वो क्या दर्शा रहे हैं कि आईएमएफ की जो जो अनुमान होता है उसके भी ऊपर हमारा आखिरकार विकास बीते वर्षों में भी हमने दर्ज किया, और इस वर्ष भी यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम बेहतर कर पाएंगे. क्या हमारे वो कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं?
0: देखिए, हमारे जो कारक हैं वो मेजरली हमें जो सपोर्ट आती है, तो जो हमारा

0: डोमेस्टिक कंजम्पशन है, खास करके जो रूरल डेवलपमेंट, वहां से हमें बहुत सपोर्ट आती है जो हमारी इकोनॉमी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आईआईपी नंबर्स है, आईआईपी नंबर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर 10% से ज्यादा ग्रो किया, और जो डिजिटल इकोनॉमी है बहुत अच्छे से बूस्ट कर रही है। तो जो आईएमएफ के एक पैरामीटर्स होते हैं जिनमें इस समय पे वो सभी संभावनाओं को देखते हुए कि शायद ये जो क्वैगमायर है मिडल ईस्ट का, ये इंडिया की ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, तो वो सारे फैक्टर्स को लेके अनुमान लगाते हैं कि जो ग्रोथ है वो इस लेवल पे रहेगा। बट इंडिया का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है दैट इज सपोर्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक द इनफॉर्मल सेक्टर इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली, उसका जो ग्रोथ है उसको उसको अनुमान करना कि वो कहाँ पे जाके आगे कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस जंक्चर पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है। व्हेन यू सी द नंबर्स तभी वो जाके पता चलता है कि हमारा तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा तो सर्विसेज सेक्टर है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द आईएमएफ नंबर्स, हमेशा मैं ये देखता हूँ।
1: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026। द कंपनीज रेवेन्यू ग्रू बाय 2.2% टू 72,275 करोड़ रुपीज ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ऑन एन एनुअल बेसिस द रेवेन्यू इंक्रीज्ड नियरली 14%। हाउएवर नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्रॉप्ड नियरली 2.7% टू 13,349 करोड़ रुपीज quarter on quarter basis. The information technology major has declared an interim dividend of 12 rupees per share.
2: यहाँ पर हम समझना चाहेंगे पूरे आईटी सेक्टर की स्थिति को, और जो एआई का एक कह लें नया नई हवा चली है उससे दुनिया भर के बाजार प्रभावित हो रहे हैं, और खासतौर से पूरा सेक्टर आईटी सेक्टर का। तो हमारे यहाँ सर्विसेज के जरिए हमने कह लें कि अच्छी फसल काटी, आने वाले दिनों में एआई हमारे आईटी सेक्टर को किस रूप में प्रभावित करने जा रहा है?
0: देखिए, मैं मनोज जी नहीं समझता कि जो एआई है उसका कोई खराब असर आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि एआई के आने से आईटी सेक्टर और भी अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन अभी जो आईटी कंपनीज के ऊपर दबाव आता है आप देखेंगे कि वो एआई का नहीं है ज्यादातर, वो ये जो क्राइसिस है मिडिल ईस्ट इसकी वजह से प्रभावित होता है। इसकी वजह आप देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसी पीस प्रोसेस आती है तो ये शेयर्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ऊपर भागते हैं। तो एआई का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा कोई भी आईटी के ऊपर, ये मेरा मानना है कि दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिवली द आईटी सेक्टर।
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं एशियाई शेयर बाजार। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज खरीदारी तेज रही है, हालांकि कुछ स्थानों पर बिकवाली भी देखने को मिली। निवेशकों की खरीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.4% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया के कोसी में 0.6% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। उधर चलन के विपरीत ताइवान का ताइएक्स 0.8% लुढ़क गया। हांगकांग के हिंगसेंग में भी 0.7% की गिरावट हुई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में उपभोक्ता मूल्य में इस वर्ष जून महीने में वार्षिक आधार पर 1% की वृद्धि हुई है, हालांकि विगत मई में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी, यानी थोड़ा सा कम रहा। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये चीन के आंकड़े हैं तो वहीं की ये आंकड़े हैं, की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.1% दर्ज हुआ, जबकि विगत मई में यह वृद्धि 3.9% रही थी। यहाँ पर हम एशियाई बाजार पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बाजार तो दुनिया भर के अमेरिका और ईरान के तनाव में प्रभावित हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से हम पूरे एशियाई जोन को देखें तो क्या आसार लग रहे इन आशंकाओं का, युद्धों का, और ताजा जो लहर उठी है एक नए दौर की, उसका क्या असर पड़ता दिख रहा है आपको?
0: देखिए मनोज जी, जो एशिया रीजन है इसमें ज़्यादातर बहुत अच्छे से इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो मेजरली एक वर्ल्ड के जो ग्रोथ ड्राइवर भी हैं, जिसमें आपके इंडिया है,

0: चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो ये सभी कंट्रीज बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्लोबल लेवल पे ऐसी होती है हलचल, जो जैसे अभी हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड डिमांड तो स्लो होती है बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स, तो उनके जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आता है, तो ग्रोथ प्रभावित तो होती है, बट वो इतना भी प्रभावित नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा या नेगेटिव में चले जाएगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। 1-2 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क आता है, जैसे हमने लेमन क्राइसिस में देखा, जो 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल
1: जी
0: क्राइसिस आया था, तो जो चाइना का ग्रोथ था वो लगभग कोई 10.25% से 3 परसेंटेज पॉइंट्स फिसल के साथ पे आया था। इंडिया का 2-9% के आसपास से फिसल के कोई लगभग कोई 6.75% पे आया था, 6.5 और 7 के बीच में। तो इतना प्रभाव आता है जब भी कोई ऐसी
1: बड़ी घटना
0: क्राइसिस,
1: होती है।
0: बड़ी
1: जी
0: कोई क्राइसिस आती है, ऐसे कोरोना के टाइम पे देखा गया,
1: जी जी जी
0: तो अभी भी वैसा ही प्रभाव है। तो मार्केट्स जब कोई ऐसी, जैसे कल की घटना थी,
1: जी
0: ट्रंप साहब ने एकदम से अनाउंस किया कि अब कुछ नहीं हो सकता,
1: जी
0: तो मार्केट से एक समय धराशायी हुई, जो जिसको हमने हाहाकार बोला कि भी ऐसे।
1: जी जी
0: लेकिन जैसे ही वो कोई, उनके इंटरनल वीकनेसेस नहीं है इन कंट्रीज के, इनके
1: जी
0: मार्केट्स के, वो प्रभावित हैं जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उनसे। तो जैसे ही उन्होंने रुख अपना बदला कि मेरे को फोन कॉल आए हैं, तो वैसे ही मार्केट्स ने अपना भी
1: बिल्कुल
0: रवैया चेंज कर दिया, क्योंकि उनका इंटरनल तो कुछ भी नहीं है,
1: जी
0: दे आर ओनली वॉचिंग द इंटरनेशनल डेवलपमेंट।
1: बेसिकली रिएक्टिंग टू वट एवर इज हैपनिंग
0: यस
1: इन द वर्ल्ड
0: यस
1: एंड इट्स ऑल अ परसेप्शन
0: जी जी
1: दैट द
0: जी
1: मार्केट्स
0: बिल्कुल।
1: आर
0: अब आप
1: रिएक्टिंग टू।
0: देखिए कि कल जो जिस तरीके से मार्केट्स गिरी थी,
1: जी
0: 500-600 पॉइंट्स निफ्टी फिसला, और आज उतना, तो ऐसा इंटरनली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि भाई कल कोई
1: जी
0: बहुत बड़ा वीकनेस आया इकोनॉमी में और एकदम से आज रिबाउंड
1: बिल्कुल
0: कर गया। ये तो मेजरली जो ग्लोबल इम्पैक्ट है।
1: जी
2: यानी लहर भूचाल
0: जी
2: की
0: जी
2: जो
0: जी
2: बाजार में बयानों से पैदा होती है उसी के
0: राइट
2: शिकार हुए
0: राइट
2: बाजार।
0: जी जी जी
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में दोनों प्रतिनिधियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने में मजबूती मिलेगी।
3: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्स की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे।
1: डॉक्टर शर्मा, हियर आई वांट टू यू नो आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट इंडियन ऑस्ट्रेलिया हैव टुडे अग्रीड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फॉर इंडियाज सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट, स्पेशली यू नो व्हेन एट द If you look at the political, the geopolitical situation right now, there's an energy crisis. From India's energy security point of view, this kind of an agreement, how
0: yes,
1: important is it?
0: Yes, Anubhaji, this is a great development because recently we were very, very progressive with Japan also, and now with Australia, because we have to secure our critical minerals trajectory. Because these are the growth drivers of the Indian economy in the in future, and to achieve our target of various things like the export target or the target of our GDP.
1: Yes.
0: Because when you produce, you need the inputs, and critical minerals, one of the most important inputs for the technological developments. So I think we have already a great free trade agreement with Australia, and trade is increasing significantly, almost double during the last 5-6 years. So going

0: Forward, I believe that these relations, bilateral relations, will further deepen, and our trajectory of give and take will become more and more robust, and trade will flourish in the coming times.
1: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा हम आपका ध्यान आकृष्ट करने करना चाहेंगे साइबर सुरक्षा की दिशा में, जिस पर भी महत्वपूर्ण पहल हुई है. दुनिया भर में जो साइबर हमले हो रहे हैं उसमें आपसी समझौते और एक दूसरे को उचित समय पर हर तरह की सूचना देना, साथ ही तकनीक हस्तांतरित करना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा समझौता होने जा रहा है वह हमारी साइबर सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा?
0: देखिए मनोज जी, जो साइबर सिक्योरिटी है दैट इज नॉट इन आइसोलेशन. हम अगर कहें कि हम अपना साइबर सिक्योरिटी खुद कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है.
1: बिल्कुल,
0: वी हैव टू कोऑपरेट विद दी इंटरनेशनली. तो हर एक कंट्री के साथ जहां भी हमें कुछ आसार बहुत अच्छे नजर आते हैं, हमारा जो एक बिहेवियर है बायलेटरल रिलेशन, तो हमें उनके साथ साइबर सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करने में फायदा है. सो दैट हम आपस में अपना जो तालमेल करके जो भी हमले जैसे आपने बताया उनको ज्यादातर रुका जा सके.
2: Let's move on to the next story. The government has waived basic customs duty on goods used in the manufacture of display assemblies, lithium ion cell and inductor coil module, with an aim to promote domestic production of electronic devices like smartphones, laptops, wearables and smart TVs. The Ministry of Finance has issued three separate notifications giving effect to the basic customs duty waiver on the goods used in the manufacture of the three key components used in electronic devices. The exemption is in line with the government's efforts to promote domestic electronics manufacturing under the PLI scheme. The duty waiver will reduce import dependence and strengthen the electronics ecosystem with local production. A comment on this: how important is this decision to waive, and how will it strengthen and stimulate the domestic electronics manufacturing ecosystem?
0: Yes, Anubhaji, because we are significantly progressing in the domestic electronics ecosystem, and as you must have observed that our electronics, our mobile phones are now gaining great pace in the global marketplace, and these are increasing significantly. Now we are the great exporter to many countries, to Africa and to Europe and America. So going forward, government policies, particularly the ease of doing business and the PLI scheme, yes, for the such promising areas are very, very useful and beneficial for the producers and for the export markets. So going forward, I believe our electronics sector will become more robust, and this will support our overall trajectory of, yes, exports. Like we have target of 1 trillion for the current financial year, and by 2030 we have 2 trillion target, 1 trillion from merchandise and 1 trillion from, okay, services. So such kind of promising sectors are required to move forward and to become very, very supportive for our overall एक्सपोर्ट्स.
1: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा हम आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि ये सिर्फ राजस्व कमाने का जरिया बनेगा या हमारे गजट भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे कस्टम शुल्क घटने से.
0: देखिए इसमें जो देखो एवरी स्टेप इज फॉर दी वेलफेयर क्रिएशन.
1: जी जी,
0: सरकार कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेती है कि वो खाली अपना राजस्व को इंक्रीज करने के लिए होगा. सब जो कंज्यूमर, जो पीपल वेलफेयर है, दैट इज एट ऑलवेज एट दी फ्रंट एंड दी कोर ऑफ दी एजेंडा. जैसे अभी सरकार ने, आपने देखा होगा, जीएसटी में कितने रिलीफ दिए पीछे, जो कुछ 6 महीने पहले की बात है, तो कितना उससे हमारी कंजम्पशन ट्रैजेक्टरी कितनी मजबूत हुई.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स हमारी जो ग्रोथ है वो कितना इंटैक्ट रही. 7.7% इज नॉट अ इजी टास्क इन सच अ क्वैगमायर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट. हम फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का हमारा खिताब जो है मौजूद है.
1: यानी प्रधानमंत्री जो कहते रहते हैं आपदा में अवसर ढूंढने की कला भारतीयों ने सीखी, तो वो हम निकाल लेते हैं.
0: हमने प्रूव किया है, वो नंबर्स बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया.
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.9% up at $78.69 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $74.05 per barrel when reports last came in. And also let's have a look at the prices of gold and silver in the Indian bullion market. 24 carat gold was trading 0.7% up at 1,45,140 rupees per 10 grams, while silver was trading was trading 1.4% up at 2,26,540 rupees per kilogram a short while ago.

0: श्रोताओं, आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां अगस्त अनुबंध वाला सोना समाचार तैयार किए जाने तक 0.6% महंगा होकर 1,44,626 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.4% की बढ़त के साथ 2,26,500 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। यहां पर हम समझना चाहेंगे, डॉक्टर शर्मा, आप लगातार सोने में बुलिश रहे हैं और आपके अनुमान समय की कसौटी पर हर बार खरे साबित हुए हैं, यानी मार्केट मंत्रा के श्रोताओं के लिए आप खरे विशेषज्ञ के रूप में सोने के मूल्य को लेकर दिखे हैं। तो अब यहां से सोना किस दिशा में जा रहा, अब के स्तर पर निवेश करना कितना उचित होगा और किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए यदि कोई खरीदना अभी भी चाहे तो?
1: देखिये, दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में है, गोल्ड एंड सिल्वर। आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले 5-6 महीने से जो रेंज है, खास करके फरवरी के बाद, वो गोल्ड में 230 और 260 के बीच में है और सिल्वर में 225 से 250 के बीच का रेंज बना हुआ है। तो ये रेंज थोड़ी देर और बरकरार रह सकती है, कंसोलिडेशन का मूड है। लेकिन इन द लॉन्ग रन, अगर हम आज से 3 साल या 5 साल का होराइजन लेके चले, तो प्राइसेस आपको इससे कहीं ज्यादा मिलेंगे आने वाले टाइम।
0: यानी आने वाले दिन में चमक तेज ही होगी सोने के, ऐसे आसार है। यहाँ बहुत संक्षेप में, निवेश करना हो सोने में तो कैसे करें?
1: देखिये, निवेश के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ETF है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ETF में करें, जिससे कि देश को भी फायदा और कंज्यूमर को भी, जिससे जो मनी भी है वो फाइनेंशियलाइजेशन होगा और उनको भी फायदा, तो सब जने।
0: यानी भौतिक सोना की जगह निवेश की दृष्टि से ETF सही सौदा। यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds over 200 points. Nifty settles at 23,963. India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor also operationalized. Partnership in cyber, critical technologies and supply chains. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य

0: की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया है और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में रोजगार और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 159 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net-zero goals." Prime Minister Narendra Modi has said that India's aspiration to become one of the world's top 3 economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More. Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne yesterday.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, प्राइम मिनिस्टर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है चोरी चोरी, आवाज है मन्ना डे और लता मंगेशकर की।

तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे, तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे, उस क्षण मुझे लगा था मानो ऋतुएं अपने बिखरे हुए रंग समेटकर एक ही पंखुरी में उतर आई हूं। उस क्षण मुझे लगा था कि मानो ऋतुएं अपने बिखरे हुए रंग समेटकर एक ही पंखुड़ी में उतर आई हूं। न जाने कितने बरसों की स्मृतियां उस छोटे फूल में छिपी थीं।

तेरी मुस्कान का कंपन, बिछुड़ते समय पलकों पर ठहरा जल और वे असंख्य भाव जो कभी शब्दों तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं तुम्हें देख रही थी, पर सच तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे से अधिक तुम्हारी वापसी को देख रही थी, क्योंकि लौटना केवल कदमों का सफर नहीं होता, लौटना वो साहस है जो किसी हृदय को बरसों बाद भी अपना पता याद रहने देता है। हम दोनों के बीच उस दिन बहुत कम शब्द थे, किंतु मौन से कहीं अधिक मुखर थीं हमारी आंखें। उनमें एक साथ विरह की नमी भी थी और मिलन की चमक भी। ऐसा लग रहा था जैसे दो किनारे लंबे अंतराल के बाद एक ही नदी में अपना प्रतिबिंब देख रहे हों। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, यह भी कि तुम्हारे बाद बीते दिनों ने मुझे बदल तो दिया, पर तुम्हारे लिए रखी हुई जगह को कभी छोटा नहीं कर पाए, पर तुम्हारे लिए रखी हुई जगह को कभी छोटा नहीं कर पाए। तुम जब फिर से मेरी हथेली पर एक गुलाब रख गए थे। और अगला गीत, फिल्म का नाम है भीगी पलकें, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

बड़ी ही खूबसूरत शाम थी वो तेरे साथ की, बड़ी ही खूबसूरत शाम थी वो तेरे साथ की, अब तक खुशबू नहीं गई मेरी कलाई से तेरे हाथ की। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है कठपुतली और आवाज़ है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कितनी अजीब सी बात है ना कि कविताएं हम सभी पढ़ते हैं, लिखते भी हैं और सुनते भी हैं, पर जब हमसे पूछा जाता है कि कविता क्या है तो हम भारी भरकम शब्दों में कविता की व्याख्या करने लग जाते हैं। शायद हम अब तक नहीं जान पाए कि कविता क्या है। बड़ी सुंदर सी बात है कि मध्यम संगीत, धुंधली रोशनी, केतली से कपों में छनती चाय का जादू, हरे पत्तों की चरचर, मरमर में घुल घुल जाता वायलिन का स्वर, पीले नीले गुलाब की खुशबू और धरती की आगोश में समाते बादल, नीली रोशनी में दुबकता चांद, यही तो कविता है। इतनी सुंदर परिभाषा और इतने सरल शब्दों में अगर कविता है तो कविता को जीना और उसे महसूस करना कितना सुंदर हो सकता है। बातें और भी करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक गीत। फिल्म का नाम है राजपूत, आवाज है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिकंदा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनजाना, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही, जो कभी अपने ही प्रश्नों के बीच अलग थलग खड़ी रहा करती थी। तुम्हारा नाम किसी पुकार की तरह नहीं आया, ना किसी दावे की तरह, बस जैसे सूखी धरती पर पहली हरियाली का संकेत उतरता है, वैसे ही मेरे भीतर एक नया अर्थ आकार लेने लगा। मैंने देखा गुलमोहर पहले भी खिलते थे, पगडंडियां पहले भी थीं, आकाश पर बादल भी पहले जैसे ही आते जाते थे, पर न जाने क्यों उन सब के चेहरे बदल गए। लगता था जैसे दुनिया ने कोई नया वस्त्र नहीं पहना, पर मेरी दृष्टि ने पुराने दृश्यों में नया संगीत खोज लिया हो। अब जब मैं किसी पुस्तक का पन्ना पलटती हूँ, अक्षरों के बीच एक महीन सी गर्माहट उतर आती है। जब किसी नदी का उल्लेख पढ़ती हूँ, तो उसके जल में तुम्हारी सहजता की झलक मिलती है। जब किसी वृक्ष के नीचे बिखरे पत्तों को देखती हूँ,

तो लगता है बिछड़ना भी कितना सुंदर हो सकता है यदि स्मृतियां अपना हाथ न छोड़े। मैंने तुम्हें कभी अपने अधिकार में नहीं चाहा, न तुम्हारे लिए कोई शर्त लिखी, न कोई सीमा खींची। मुझे तो बस इतना मिला कि मेरे दिनों के फीके कैनवास पर कुछ दुर्लभ रंग उतर आए। अब मैं बरसात को केवल बरसात नहीं कहती, उसमें प्रतीक्षा का मधुर व्याकरण पढ़ती हूँ। संध्या को केवल संध्या नहीं समझती, उसमें लौटते परिंदों की कथा सुनती हूँ। और रात्रि, वह भी अब अंधेरे का दूसरा नाम नहीं रही, वह तो तारों से लिखी एक लंबी चिट्ठी जैसी लगती है। और कभी कभी सोचती हूँ, मनुष्य का मन भी कितना अद्भुत है। एक व्यक्ति का ख्याल उसमें इस तरह बस जाता है कि ऋतुएं अपना परिचय बदल देती हैं। फूलों की गंध, मिट्टी की सौंधी रेखाएं, आंगन में उतरती धूप, छत पर भटकती चांदनी, सब मानो एक ही कथा के अलग अलग अध्याय बन जाते हैं। हर दिन की साधारण सी धूप में कुछ ऐसा घुलता गया कि मैं वही नहीं रही। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जब याद किसी की आती है, आवाज है महेंद्र कपूर की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना

सकते हैं। नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में कल नोस्कोवा ने मार्ता कोत्स्यूक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला शनिवार को लिंडा नोस्कोवा और कैलोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में आज तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज तेज वर्षा होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

मन कभी धरती का नागरिक नहीं रहा, उसने हमेशा आकाश की ओर ही देखा है। जब भी दिनचर्या ने उसके पैरों में अनगिनत गांठें बांधनी चाहिए, वह किसी अनजानी दिशा की ओर एक पंख बनकर निकल पड़ा। बादलों के बीच उड़ता वो पंछी किसी मंजिल का भूखा नहीं था, उसे केवल ये जानना था कि क्षितिज के उस पार भी क्या कोई ऐसी भूमि है जहां सपनों पर पहरा नहीं होता। वो उड़ता रहा, कभी धूप की महीन रेखाओं के सहारे, कभी वर्षा की बूंदों के बीच से रास्ता बनाता हुआ, कभी बिजली की चमक से चौंकता तो कभी गगन की विराटता में अपने ही अस्तित्व को पढ़ता हुआ। उसे मालूम था कि हर बादल जल से भरा नहीं होता, कुछ बादल स्मृतियों से बने होते हैं जो बरसते नहीं, केवल भीतर किसी भूले हुए मौसम की आहट जगाते हैं। ऐसे ही एक बादल के पास से गुजरते हुए उसने बचपन की वो दोपहर देखी जो अब वर्षों से कहीं दर्ज नहीं थी। वो कच्चे आंगन की मिट्टी, वो अनगढ़ हंसी, वो बिना कारण दौड़ पड़ना, मानो सब कुछ फिर से जीवित हो उठा। मन का पंछी मुस्कुराया, उसे लगा आकाश केवल ऊपर नहीं होता,

कुछ आकाश भीतर भी बसे रहते हैं, जहां उम्र का कोई अधिकार नहीं चलता, जहां स्मृतियां अपनी सबसे निर्मल आकृति में निवास करती हैं, जहां स्मृतियां अपने सबसे निर्मल आकृति में निवास करती हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अनपढ़, आवाज है लता मंगेशकर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती।

गीत सुहाने में अब जो गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है हरे कांच की चूड़ियां, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। दूर कहीं धूसर बादलों का एक समूह था, जिनके भीतर अनकहे दुखों की नमी थी। पंछी ने उनके बीच से उड़ते हुए जाना कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियां भी मनुष्य को रिक्त नहीं करती, वे उसे और गहरा बनाती हैं। जो पीड़ा से गुजरता है वो अक्सर दूसरों के लिए एक सुरक्षित किनारा बन जाता है। ये सीख लेकर वो फिर

ऊंचाइयों की ओर निकल गया। अब उसके सामने संध्या की लालिमा फैली थी। आकाश किसी महान चित्रकार का कैनवस लग रहा था, जहां हर रंग अपनी कथा कह रहा था। पंछी ने उन रंगों में अपनी इच्छाओं के कई चेहरे देखे। कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, और कुछ ऐसे जिन्हें उसने कभी शब्द ही नहीं दिए। और तब उसे समझ आया कि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। कुछ इच्छाएं केवल इसलिए जन्म लेती हैं कि मनुष्य यात्रा करना सीख सके। अगला गीत, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

जीवन की धूप में तपा हुआ, जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं, लौटने को सोचता हूं, तो घर याद आता है। जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं, तो घर याद आता है। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं, आवाज है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की।

दबे पांव आए दबे पांव गए, दबे पांव आए दबे पांव गए, मेरी जिंदगी के फर्श पर तुम सभी निशान छोड़ गए।

मेरी जिंदगी के फर्श पर तुम सभी निशान छोड़ गए, दबे पांव आए दबे पांव गए। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर।

मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिल देके देखो। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार

0: करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। बोस्टन में फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबले में 0-0 की बराबरी है। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. India and Australia have adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia. Prime Minister Narendra Modi's official visit to Australia has marked a significant milestone in India-Australia relations, with both countries taking several important steps to deepen cooperation across key sectors. Briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said the discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese reflected the growing strategic partnership and close understanding between the two leaders. During the third annual India-Australia summit, both sides finalised the administrative arrangement for the long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals. The two leaders also reviewed progress and economic cooperation. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said India continues to emerge as a preferred destination for global capability centers, GCCs, because of its skilled workforce, strong institutions and innovation ecosystem. Addressing the CII National GCC Business Summit 2026 in New Delhi, Ms. Sitharaman said the country hosts more than 2,100 GCCs employing 23 lakh professionals directly and generating nearly $100 billion in annual revenue. She said GCCs represent transformation by bringing together engineering research, artificial intelligence, cybersecurity, finance, product design and data science to drive continuous innovation. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has announced that the government is planning to introduce E85 fuel at a price around 20 rupees per litre lower than E20 petrol, with a higher ethanol blend available only for purpose-built flex-fuel vehicles. In an interview with a private news channel, Mr. Puri said the proposed move aims to provide financial relief to consumers while advancing the government's ethanol blending program. He also defended the broader biofuel policy, dismissing concerns about engine damage and vehicle performance linked to ethanol blended petrol. The minister said E85, which contains up to 85% ethanol, would be restricted to vehicles specifically designed to use the fuel and would be about 20 rupees cheaper per litre than the standard E20 petrol. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has arrived in Oman after concluding his visit to Kuwait. Upon arrival, the External Affairs Minister was received by Director General Foreign Ministry of Oman, Sheikh Ahmad Al Mashkuri. Dr. Jayashankar is currently on an 11-day trip to Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, New York, and

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

जो आंख भर के दिखाई दे, जो आंख भर के दिखाई दे उतना ही सच मत मान। हर एक मंजर के पीछे भी कई मंजर निकलते हैं, हर एक मंजर के पीछे भी कई मंजर निकलते हैं। जो आंख भर के दिखाई दे उतना ही सच मत मान। अगला गीत फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि यादें कभी जाती नहीं, वे बस स्वर बदल लेती हैं। कभी वे मुस्कान बनकर आती हैं, कभी हल्की चुभन बन जाती हैं। पर सच ये है कि वे हमारे ही भीतर हमें बचाए रखती हैं। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, वो भीतर कहीं ठहर गया, हमें थोड़ा और गहरा बना गया। इसलिए यादें हम में ही ठहर जाती हैं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आरती, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। हर रिश्ता शब्दों से नहीं चलता, कुछ रिश्ते एहसासों से सांस लेते हैं। जहां अपेक्षाएं कम होती हैं वहां अपनापन अधिक होता है। रात हमें सिखाती है किसी को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वह दूरी में भी बना रहता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कितनी सुंदर बात है ना कि समय कभी रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता है, पर उसके भीतर हमारे कई रूप छुपे होते हैं, जो हम थे, जो हम हैं और जो हम बन सकते हैं।

इन सब का संगम ही जीवन की असली पहचान है। और आज सुरमई में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज है लता मंगेशकर की।

और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है दोस्ताना, आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। तो आप सुनिए एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिकता संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। PIB ने नागरिकों को गलत सूचना फैलाने वाले ऐसे दावों से सावधान रहने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं।

100.1 यानी आकाशवाणी FM गोल्ड 3:10 और 56 सेकंड हुए हैं दोस्तों। ये समय होता है कार्यक्रम हमराही का, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इंतज़ार प्यार की सबसे खूबसूरत और सबसे सच्ची परीक्षा मानी जाती है। जब कोई अपने दिल के बहुत करीब होता है और उसकी यादें हर पल साथ रहती हैं, हर आती जाती हवा, हर गुजरता लम्हा और हर अनजानी राह यही एहसास दिलाती है कि शायद कहीं कोई हमें भी उतनी ही शिद्दत से याद कर रहा होगा। अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो भी उसके बोल तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि इस गीत में उम्मीद है, मासूम सी बेचैनी है और उस मुलाकात का ख्वाब है जिसका इंतज़ार हर प्रेम करने वाला कभी ना कभी करता है। तो आइए कुछ पल के लिए अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, पुरानी यादों की गलियों में चलते हैं और इस खूबसूरत नगमे के साथ उस एहसास को महसूस करते हैं।

तो दोस्तों ये गीत था फिर कब मिलोगी फिल्म से, और आवाज़ें आप पहचान ही गए होंगे, लता मंगेशकर और मुकेश की। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल कुछ यूं हैं, बादल यूं गरजता है। फिल्म बेताब का ये खूबसूरत गीत सिर्फ बारिश की ही बात नहीं करता बल्कि उन धड़कनों का एहसास भी कराता है और प्यार की पहली दस्तक पर तेज हो जाता है। बाहर गरजते बादल हों या फिर दिल के भीतर उठता तूफान, दोनों ही हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अक्सर हल्की सी घबराहट और ढेर सारी उम्मीदों के साथ आते हैं। तो आइए भीगते मौसम और धड़कते एहसासों के नाम सुनते ही लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ जहन में याद आ जाती है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, बारिश की फुहारें जब धरती को छूती हैं तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, दिल का मिजाज भी बदल जाता है। सावन अपने साथ ढेर सारी यादें, अनगिनत एहसास और प्यार की मीठी खुशबू लेकर आता है। ऐसे ही भीगे भीगे लम्हों को सुरों में पिरोया है एक खूबसूरत से गीत ने, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत में बरसती बूंदों की ताजगी है और मन की कोमल भावनाएं हैं और प्रेम का वो सुकून है जो हर मौसम को खास बना देता है। तो यकीन दिलवाते हैं आपको इस गीत से कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा।

दोस्तों, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से के जरिए ही जाने जाते हैं, और कुछ गीत उन्हीं एहसासों को आवाज़ देते हैं। ऐसा ही एक गीत है तू ही रे, ऐसा ही एक कालजयी नगमा जो प्रेम, विरह और उम्मीद तीनों को एक साथ समेटे हुए है। जब अपनों से दूरी बढ़ जाती है, तब हर धड़कन उसी एक शख्स का नाम पुकारती है जो दिल की दुनिया के सबसे खास हिस्सा बन चुका होता है। इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ प्रेम का इजहार नहीं, बल्कि उस अटूट भरोसे की कहानी भी है जो हर मुश्किल और हर फासले के बावजूद जिंदा रहता है। AR रहमान का जहाँ खूबसूरत संगीत है, वहीं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की मखमली आवाजें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे फिल्म के इस गीत की।

37 मिनट और 42 सेकंड हुए हैं। एफएम गोल्ड पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और आज हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत असर शायद यही होता है कि इंसान अपनी सुदबुद्धि भूल जाता है। दिल किसी की मुस्कान, किसी की बातों और किसी की मौजूदगी में इस कदर खो जाता है कि दुनिया की हर चीज पीछे छूट जाती है। वैसे तो प्यार में हार जाना भी कभी कभी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। जब दिल किसी अपने को अपना मान ले तो फिर शिकायत नहीं रहती, सिर्फ उसी के नाम की धड़कने रह जाती हैं। ऐसा ही एक गीत है जो हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है मंजिल मंजिल, आवाज़ें आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की हैं।

सुबह की पहली किरण से लेकर शाम की ढलती रोशनी तक अगर किसी का ख्याल हर पल साथ रहे तो समझ लीजिए दिल ने अपनी मंजिल चुन ली है। मोहरा फिल्म का ऐसा ही एक चुलबुला और रोमांटिक गीत है जिसमें प्यार की मासूमियत, अपनापन और साथ निभाने का खूबसूरत एहसास झलकता है। आइए आपको सुनाते हैं उसी फिल्म का एक गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण और साधना सरगम ने।

कुछ पल ऐसे होते हैं जब पूरी दुनिया की भीड़ में भी इंसान को सिर्फ एक ही जगह सुकून मिलता है और वो है अपने प्रिय की बाहों में। वंश फिल्म का ऐसा ही एक सदाबहार रोमांटिक गीत है जिसे हम आपको सुनवाएंगे। इस गीत में प्यार का अपनापन, रिश्तों की गर्माहट और साथ होने का अनमोल एहसास बेहद खूबसूरती से उभर कर सामने आया है और इस गीत को आवाज़ें दी हैं SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, ज़िंदगी की राह में कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं जिनके आने से हर दिन में नई रोशनी और हर पल में नया अर्थ जुड़ जाता है। उनकी मौजूदगी सिर्फ साथ नहीं देती बल्कि जीने का अंदाज भी बदल देती है। कुछ ऐसा ही है फिल्म दूरियां के इस गीत में। इसी खूबसूरत एहसास को इस गीत ने बड़ी सादगी से और गहराई से अपनी बात कही है। तो आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण 3 प्राचीन कलाकृतियों को ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और 6 सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक LPG टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले वर्ष यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले LPG टैंकर MV फाल्कन में हुए विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में कल लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बनाई। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना।

0: इसके साथ ही मुझे यानी अर्चना बिसारिया को हमराही कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: बेसबब था तेरा मिलना रह गुजर।

100.1 MHz यानी FM गोल्ड, और समय हुआ है 4:11 समझ लिए जी होने को है। दोस्तों इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा, और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों हर नई सुबह सिर्फ सूरज की किरणें ही नहीं लाती बल्कि अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। बीती हुई रात चाहे कितनी भी लंबी रही हो लेकिन उम्मीद की सुबह हमेशा उसका इंतजार करती है। जिंदगी में ठहराव हमेशा के लिए नहीं होता और प्रकृति हर मौसम के बाद फिर से खिल उठती है। वैसे ही इंसान भी अपने हौसलों से हर मुश्किल के बाद दोबारा मुस्कुरा सकता है। अगर आज रास्ते कठिन लग रहे हैं तो याद रखिए हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह आपका इंतजार करती है। बस जरूरत होती है जागने की, आगे बढ़ने की और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखने की। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाज दी है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है हीरो।

जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार खामोशी ही सबसे खूबसूरत बातचीत बन जाती है। एक नज़र, एक मुस्कान या बस किसी अपने का साथ, इतना ही काफी होता है दिल की बात समझने के लिए। हर भावना को अल्फाज में बयां करना जरूरी नहीं। कभी कभी ठहर जाना, हर पल को जी लेना और दिल की आवाज़ सुनना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, हर सफर में शोर जरूरी नहीं होता। कुछ पल खामोशी के भी होते हैं तो हमें सुकून दे जाते हैं, रिश्तों को गहराई देते हैं और अपने भीतर झांकने का अवसर भी देते हैं।

जिंदगी हमें हर दिन एक नई सीख देती है, कभी आगे बढ़ने की, कभी ठहर कर खुद को समझने की, और कभी ये एहसास दिलाने की कि सबसे बड़ी ताकत अकेले चलने में नहीं बल्कि सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। जब सहयोग, विश्वास और सकारात्मक सोच साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी के साथ प्रेरणा और विश्वास ज़रूर होता है। याद रखिए दोस्तों, सफलता सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि रास्ते में लोगों का हाथ थामते हुए आगे बढ़ने का भी नाम है।

दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल ज़रूर आते हैं जब उसे किसी अपने की और अपने के सहारे की तलाश होती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक हम खुद अपने सच्चे साथी नहीं बनते, तब तक कोई भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकता। अगर कभी लगे कि साथ देने वाला आपके साथ कोई नहीं है, तो अपने हौसले को अपना हम सफ़र बना लीजिए, क्योंकि वही आपको हर मुश्किल और हर मुंह से निकाल कर मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगा।

चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक खेल की तरह है। इसमें हर दिन एक नई चाल चलनी पड़ती है। कभी जीत आपकी झोली में आती है तो कभी हार आपको कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ा देती है। लेकिन वो खिलाड़ी हर हार के बाद फिर से मैदान में उतरता है, वही आखिरकार जीत का असली हकदार बनता है। जीवन को बोझ बनाकर नहीं बल्कि पूरे उत्साह और हिम्मत के साथ जीना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मुस्कुराते हुए उनका सामना ही करना ही असली जीत है।

हर इंसान के मन में कभी ना कभी उड़ान भरने की चाह ज़रूर होती है। हम सब चाहते हैं कि डर, सीमाओं और मुश्किलों से ऊपर उठकर अपने सपनों के खुले आसमान तक पहुंच जाए, लेकिन असली पंख हमारे कंधों पर नहीं, हमारे हौसलों में होते हैं। सपनों को सच करने के लिए पंख नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प चाहिए। जो लोग अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं वो परिस्थितियों की बेड़ियों को भी हमेशा के लिए तोड़ देते हैं, कुछ इस तरह से।

जिंदगी की एक खासियत ये है कि ये हर दिन एक नया इम्तिहान भी देती है और एक नई उम्मीद भी। ऐसे में अगर दिल बेकरार हो तो उसे मायूस करने के बजाय उम्मीद का एक गीत सुनना चाहिए, बेकरार दिल तू गाए जा। ये ऐसा ही एक सदाबहार नगमा है जो सिखाता है कि हालात जैसे भी हो मुस्कुरा

ना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत कला है। इस गीत की धुन में आशा है, बोलों में हौसला है और आवाज में एक ऐसी मिठास है जो मन को सुकून देती है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों की रात भले ही कितनी लंबी क्यों ना हो, एक नई सुबह हमारा इंतजार जरूर करती है।

दोस्तों, कुदरत का हर पंछी हमें एक अनमोल सीख देता है। उड़ान भरने से पहले वो ये नहीं सोचता कि रास्ता कितना लंबा है, वो बस अपने पंखों पर भरोसा करता है। जिंदगी भी हमसे यही कहती है कि डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन की उड़ान को कोई कैद नहीं कर सकता। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो हर बंद दरवाजे के आगे एक नई राह आपका इंतजार करती है। जीवन में कभी अपने सपनों को पिंजरे में कैद बिल्कुल मत होने दीजिए। अपनी सोच को खुला आसमान दीजिए, अपने प्रयासों को नई दिशा दीजिए और हर दिन खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश कीजिए।

ये कि भागदौड़ में सबसे ज़्यादा अगर कुछ बेचैन रहता है तो वो रहता है हमारा मन। कभी बीते कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर, और इन्हीं के बीच आज की खुशियाँ कहीं खो सी जाती हैं। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने मन को धैर्य और विश्वास का सहारा देना।

दोस्तों चलते चलते बस यही कहेंगे कि सपने पूरे करने के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं बल्कि बड़ी सोच का होना ज़रूरी है। दिल छोटा हो सकता है लेकिन अगर उस पे हौसले, उम्मीद और कुछ नया करने का जुनून हो तो वही दिल दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है।

0: प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। आधुनिक कूटनीति की नींव रखने वाली सभ्यतागत समानता का एक और गहरा प्रमाण देते हुए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन प्राचीन कलाकृतियां ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इन कलाकृतियों में देवी भद्रकाली का एक कांस्य त्रिशूल, नंदी की एक भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा और छह सिर वाले कार्तिकेय की बेसाल्ट पत्थर की एक मूर्ति शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फ्रांस फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देर रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद रहते हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 और 55 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से मैं अर्चना बिसारिया आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेरे सनम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम भोर सुहानी में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले का गाया फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत।